0: सड़क को भार वहन क्षमता भन्दा बढी लोड मालवाहक सवारी साधन मा नबकाऊ।
1: नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सड़क विभाग।

झरना संगीत प्राली सगौर प्रस्तुत गर्दछ आफ्नै कला संस्कृति अनि मौलिकता भित्र अडिग अमृत आचार्य माइला गुरुको लोक सांगीतिक कोसेली मेरो कोछारा।